0: is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
1: देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
0: डेजर्ट सफारी,
1: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
0: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
1: तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: Saffo Travel, at all protected.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
2: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
5: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica.

मने सगल पवन की सुध मने मोह चोटा ना खाए मने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मने मार्ग ठाक ना पाए मने पत्स्यों प्रगट जाए मने मग ना चले पंथ मने धर्म से ती संबंध।

तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाए सो पातशाह साहिब नानक रहन जाए।

जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रा

पर उपकार करदिया होया भी अपने गुनाह ही बख्शाने हैं। किसे जप तप का इवजाना नहीं मंगना, साढ़े जप तप वड़े नहीं। हे गुरु नानक तेरी बख्शिश बहुत वड़ी है, साड़ी चोली छोटी है तेरी बख्शिश बहुत वड़ी है। हे निरंकार असी मंदे चंगे जेहो जे हाँ तेरे हाँ। जे अपने अंदर चाती पा के वेखिए शायद नरक भी सानू ना जल सकन, पर तेरिया रहमतां वल जदों वेखी दे ते फिर मन खेड़े विच आ जांदा। अपनी करनी कर नरक हूं ना पावो थोर, तुमरो बिरद को आशरो शुमार हूं। आशरा बहुत वड्डा है तू।

लाज जे हों पूत कपूत हों बहुर पिता को लाज हे निरंकार असी चंगे मंदे जे हो जे हां तेरे हां साडे औगण नाची तारी साडे जप तप पुन दान वड्डे नहीं हन हे गुरु नानक तेरी बख्शिश वड्डी है तेरी रहमत वड्डी है।

0: एक पूर्ण साधु बना दिता। असी भी उस पार्टी दे आदमी हाँ, उदो वधीक पापी हाँ। ए निरंकार, जिस तरह बख्शे जाते हाँ सानू बख्श लै। ए गुरु नानक दे दाती जिन्होंने भी बख्शिश पानी है भाई, निम्रता धारण करनी पवेगी। जिन्होंने गुरु नानक दे घर का खजाना लुटना है, प्राप्त करना है, ते भाई फिर निम्रता धारण करनी पवेगी। महापुरख बाबा आनंद सिंह जी महाराज सारी सारी रात गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच सिमरन विच जुड़े रहना, ते अमृत वेले फिर जदों अरदास करनी साहिब जी दे चरणा विच, तां रो रो के अरदास करनी। हे निरंकार, जिवें सज्जन ठग नूं कौड़े राक्षस नूं भूमिए चोर नूं तारिया, उसे ही पार्टी दे आदमी हाँ, उदो अधिक पापी हाँ। जिस तरह बख्शे जाते हैं हे निरंकार, सानू बख्श लै। ये साढ़े लिए पूरने हैं, पूरने पा के दसे कि गुरु के सिख ने किस तरह जप तप सिमरन भजन करद्या होया भी, जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में आना है तो अपने गुनाह बख्शाने हैं। महापुरख क्या करते सन भाई, जेड़े गुनाह का तेनों पता भी नहीं ना, उन्हां दी भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में आके माफी मंगया कर। एक साखी सुनाया करते सन बाबा जी के एक वड्डी शिला ते बैठ के तपस्वी ने 100 वर्ष सिमरन किया, बंदगी की, अकाल पुरख वाहिगुरु की आवाज आई कि ए तपस्वी मंग की मंगदे। ते तपस्वी दे मन विच अहंकार आ गया, भई वेखो मेरी तपस्या परवान हो गई है, तदे ही तां ए आवाजां आ रही हैं। कई मेरा मनुख थोड़ी जी दात भी प्राप्त करके अहंकार कर बैठ रहे कि मेरे वर्गा कौन है, पर याद रखना अहंकार दी खुराक है ए शुभ कर्मा नू खा जांदी है। जिस तरह नाम की खुराक है ना पाप, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। परमेश्वर दे सिमरन की खुराक है ए पापा नू खा जांदा है। जिथों तक कीर्तन की आवाज चली जाती है पापा नू साड़ी तोरी चलती जाती है। इसे तरह अहंकार मन में आ गया ए शुभ कर्मा नू खा जांदा है। मन में हंकार आ गया तपस्वी दे, भाई मैं 100 वर्ष तप किया है, तदे तां ये आवाजां आ रही हैं कि मंग की मंगदा है, तां कहन लगा जी मैनू मेरी तपस्या दा फल दिता जा। तां निरंकार ने आख्या कि तपस्या दा फल चाहिदा है जां बख्शिश चाहिदी है, सोच लै। पर अहंकार दा पर्दा आ गया ते दुबारा भी आख्या महाराज मैनू मेरी तपस्या दा ही फल दिता जावे। जदों तीसरी वेरा भी एहो कुछ मंगया ना, तां जिस शिला ते बैठ के तपस्वी ने तप कीता सी ना, ओ शिला स्वरूप धारण करके सामने आन खड़ोती। हे निरंकार, हे वाहिगुरु, क्योंकि हुण ये हिसाब किताब विच पै गया, तपस्वी हिसाब किताब विच हुण पै गया, ते हिसाब तां कख दा भी हुंदा है, ते बख्शीश मालक लख दी भी कर देवे ना, उहदा कोई हिसाब नहीं हुंदा। उचारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: इस लई हुण ये हिसाब किताब विच पै गया, इस नूं कहो पहलां मेरा हिसाब चुका देवे, फिर इनू एदी तपस्या दा फल दे दियो, क्योंकि 100 वर्ष ये मेरे उपर बैठे, हुण 100 वर्ष मैनू अपने सिर ते रख के बैठे, पहला मेरा हिसाब चुकावे, फिर इसनू इसकी तपस्या दा फल दे देना। जदों ये सुनिया तां फिर तपस्वी दा अहंकार दूर हो गया, धरती ते विछ गया। हे निरंकार, साढ़े जप तप वड़े नहीं हन, तेरी बख्शिश वड़ी है, तेरी रहमत वड़ी है। तो इसलिए गुरु के सिख ने अमृत वेले जाग के इशनान करके नितनेम करना, सेवा सिमरन परोपकारी जीवन बतीत करदिया होया भी गुरु अगे ए

समुंदर है बख्शिशां दा सागर है ते जे एडे वड्डे सागर विच दो चार बेड़े साडे पापां दे डुब भी गए तो तैनू की फर्क पवेगा। इसलिए सच्चे पात

0: Well done, unforgettable.
1: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
0: The Cycle of Love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
2: Laddu ek aisi mithai hai, jiska naam har mauke par sabse pehle aata hai. Pass ho gaya, laddu khilao. Naukri lag gayi, laddu khilao. अरे सगाई कर ली, लड्डू नहीं खिलाए. और शादी का लड्डू तो खा के भी पछताना और बिना खाए भी पछताना, तो खाइए और पछताइए. कोई भी काम हो, सबसे पहला नाम लड्डू का. जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लड्डू पसंद है उन गणपति जी को, जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है. लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.
3: Wake up, feel good. It's Donnie Brasco.

0: ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साफो ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड। रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: ओह, लुक एट दैट बंप, यू ग्लोइंग।
4: ओह, थैंक्स।
3: हैव यू हैड whooping cough and RSV vaccines yet?
4: Oh, no, not yet.
3: Definitely get both. My niece caught RSV after she was born. It was awful.
5: RSV and whooping cough can cause serious illness in young babies. Being vaccinated during pregnancy passes on immunity and helps protect your baby in their first months of life. Speak to your midwife or GP practice. Stay strong, get vaccinated. Search nhs.uk/pregnancy vaccinations.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
3: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
2: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
3: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
6: Search is changing.
7: Customers aren't just using Google anymore.
6: They're asking AI.
7: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
6: One business, one recommendation.
7: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
6: Will your business be the answer?
7: Or the one that got left behind?
6: The future of search has already started.
7: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure

0: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर
1: हर मौके पर काम ये आए घर घर खुशियां लाए
0: जहां जिंदगी वहां सेट को माइक्रो
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती लाके दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे
4: साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
5: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बिग थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
6: रॉयल चाय ब्रू

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
7: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
4: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply. Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
8: Laddu ek aisi mithai hai, jiska naam har mauke par sabse pehle aata hai. Pass ho gaya, laddu khilao. Naukri lag gayi, laddu khilao. अरे सगाई कर ली लड्डू नहीं खिलाए और शादी का लड्डू तो खा के भी पछताना और बिना खाए भी पछताना तो खाइए और पछताइए
9: कोई भी काम हो सबसे पहला नाम लड्डू का जानते हैं क्यों क्योंकि ये लड्डू पसंद है उन गणपति जी को जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है
10: लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवरटाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
3: अंताक्षरी कंटिन्यू विद खुश.

0: now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV, an exclusive radio partner, Leica Radio Network. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Laddu ek aisi mithai hai, jiska naam har mauke par sabse pehle aata hai. Pass ho gaya? Laddu khilao. नौकरी लग गई लड्डू खिलाओ अरे सगाई कर ली लड्डू नहीं खिलाए और शादी का लड्डू तो खा के भी पछताना और बिना खाए भी पछताना तो खाइए और पछताइए कोई भी काम हो सबसे पहला नाम लड्डू का जानते हैं क्यों क्योंकि ये लड्डू पसंद है उन गणपति जी को जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं
2: Vishwanaga.

0: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. Danube 11-11. Danube Properties.
1: Danube 11-11. Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशन.

0: खतरों के खिलाड़ी every Saturday and Sunday at 7:30 PM on Colors and watch it anytime on Jio Hotstar.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियर पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
3: आप पंजाबी आ गए
0: Diljit Dosanjh non-stop on Laika Radio Punjabi. Listen now on the Laika Radio mobile app at laikaradio.com and on Alexa. A Laika Radio classic plays now.

0: की नजर
1: जहां जिंदगी बहुत सार्थक
2: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एंबिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क projects in just 11 months featuring views oasis oceans elite fashions and sports there's an opportunity waiting for you so why wait be part of dubai's growth story call the danu properties dubai london office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting
3: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर मलेशिया और थाईलैंड सेंटोसा आइलैंड बाटू केव्स जेंटिंग हाइलैंड्स बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन फ्लाइट्स फोर स्टार होटल्स इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शन सब इंक्लूडेड विजिट mahrajatours.co.uk और कॉल 07956 154846

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बेक थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बेक थिएटर हेज टिकट बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk
3: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
4: Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
5: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 Upper Tooting Road. Ya visit kijiye MinarJewelers.com. Call 0208-767-7627.
7: The people of Britain love their spin bikes. They bought loads of them. Another thing they love is moving their credit card balances to a Barclaycard Platinum credit card because they could pay no interest for up to 36 months. No wonder it's really taking off. A balance transfer fee of 3.15% applies, subject to financial status. T's and C's and exclusions apply. Check if you're eligible at barclaycard.co.uk. Representative example, 24.9% APR representative variable and 24.9% purchase rate per annum based on a £1,200 credit limit.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays, humse sasta kahin nahi mil sakta. Call travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
1: Travel Hub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
2: One performer.
3: Countless personalities.
2: A whole universe of entertainment.
3: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
2: 29th October, Ova Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक